भक्तोत्तम जगद्गुरो सुप्रभातस्तवम् भक्त्या नागराजो व्यरी।